को जो अच्छा कोई पे रुचि मेरे बा पेन कुछ जो किया वामोर मर रहा मैं कुछ अभी अभी लोने कुछ जो किया को क्या को मोर एक आप यहाँ वाला जो कुछ जो को पेनो मैं चलूँगा जी मैं तुम्हारे कहाँ

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो